कैसे भुला सकती हूँ मैं तेरी हर बात को, सीने में छुपा रखा है तेरी हर याद को। हाँ याद है।

कैसे भुला सकती हूँ मैं तेरी हर बात को, सीने में छुपा रखा है तेरी हर याद को। हाँ याद है।

कैसे भुला सकती हूँ मैं तेरी हर बात को, सीने में छुपा रखा है तेरी हर याद को। हाँ याद है।

कैसे भुला सकती हूँ मैं तेरी हर बात को, सीने में छुपा रखा है तेरी हर याद को। हाँ याद है।

कैसे भुला सकती हूँ मैं तेरी हर बात को, सीने में छुपा रखा है तेरी हर याद को। हाँ याद है।

कैसे भुला सकती हूँ मैं तेरी हर बात को, सीने में छुपा रखा है तेरी हर याद को। हाँ याद है मुझे।

कैसे भुला सकती हूँ मैं तेरी हर बात को, सीने में छुपा रखा है तेरी हर याद को। हाँ याद है, मुझे सब याद है।

कैसे भुला सकती हूँ मैं तेरी हर बात को, सीने में छुपा रखा है तेरी हर याद को। हाँ याद है मुझे।

कैसे भुला सकती हूँ मैं तेरी हर बात को, सीने में छुपा रखा है तेरी हर याद को। हाँ याद है मुझे सब

कैसे भुला सकती हूँ मैं तेरी हर बात को, सीने में छुपा रखा है तेरी हर याद को। हाँ याद है, मुझे सब याद है।

कैसे भुला सकती हूँ मैं तेरी हर बात को, सीने में छुपा रखा है तेरी हर याद को। हाँ याद है मुझे।

कैसे भुला सकती हूँ मैं तेरी हर बात को, सीने में छुपा रखा है तेरी हर याद को। हाँ याद है।

कैसे भुला सकती हूँ मैं तेरी हर बात को, सीने में छुपा रखा है तेरी हर याद को। हाँ याद है।